याज्ञाकरम है। सर्वबलदारियो अनाद्य अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्य तुमांगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सुहासे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।